गुरु साजी निवाजी सत्संग जीओ राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों से ऋषभ कहने हैं, सात और बाद दूसरा स्वर रे है, उसको ऋषभ किया जाता है, इसका प्रधान स्वर है। और पंचम जिसनों पा कहने हैं, सारे गामा पा, पंचमा स्वर जो है वो इसका वजीर स्वर है। इन्हों दोनों सुरां दे समेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुआ, जिस तरह

जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरु मातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना। जिवें हुण पहला जो रहाओ है वो ध्रुपद ताल च आया है, हुण ताल बदल गया। इस नू असी दीप चंदी कहने हैं, 14 सुर मात्र का ताल है, ताल बदल गया है, इस नू पड़ताल कहांगे। और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने, तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदर दानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ए ग्रंथ जो है सर्वलो प्रकाश की बाणी है। धागड़ दी धर्म धृग तांग दागड़ दी दिम दिरना, बागड़ दी ब्रिते बांग तागड़ दी तोम तोम तोम तिरना, दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ दी दे ताल कागड़ दी कोम किरना। इहदा अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानिया और ताना लगानी। कुम किरना नाल दे ताल दागड़ दी दे ताल के तुसी ताना लगाते हुए ताल का ना ख्याल भुल जाना। ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना। बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना इस नू कीर्तन कहिंदे। जे राग ते ताल कढ दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल दे विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। तो उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं सतगुरु।

सोजी पाई है कि मनुख आया है सेवा सिमरन परोपकार करके उस प्रभु दे नाल मिलाप करना, अपने जीवन नू पवित्र रखना, श्वास रखना। जिस तरह समुंदर दा पानी हवाड़ बन के बदलां दी राही जाके दूर वसदा, जेड़ा जल अपने मालिक वल चल पैंदा है वो कदे ना कदे जरूर फिर समुंदर विच आ मिलदा है। इसे तरह साड़ी आत्मा भी परम आत्मा तो विछड़ के आई है। जिन्होंने अपने मन नू नाम जप के सेवा करके सदा निर्मल रखिया है, क्योंकि साड़ी आत्मा एक बूंद है, वो परमात्मा एक शव सागर है। जिसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने कहा, भाई सदा इस बूंद नू निर्मल रखो, नाम जप के सेवा करके सिमरन करके। जिवें जल आ रहा है, जेड़ा ता जल अपने मालक नालों विछड़ जांदा है, गड़ियां विच पै जांदा है, टोयां विच पै जांदा है। आप देखदे हो उस जल दा की हाल हुंदा है, उस जल ते काई आ जांदी है, कीड़े पै जांदे हन, मुछक मारन लगदा है। इसे तरह जदों असी परमेश्वर दे सिमरन तो नाम तो विछड़ जांदे हां, तां साडी भी मन दी एह हालत हुंदी है। इसलिए रब दे प्यारे जे होंदे हन, उन्हां ने नाम नूं ही अपने प्राणा दा आधार बना दिया है। नाम विसरे उन्हां दी मौत हो जांदी, क्योंकि जे श्वासां दी पूंजी समाप्त हो जावे तां इस शरीर दा अंत हो जांदा है। ते जे परमेश्वर दे नाम नूं नहीं जपदा जेड़ा मनुख, उहदी आत्मक मौत हो जांदी है। इसलिए आत्मक जीवन रब दे प्यारे जीवंदे हन, जिस करके ए

भाई रूपा जी नाम दे रशिये, जिन्हां ने धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी पासों नाम दी दात प्राप्त कीती। सोना नाम दा रंग चढ़िया है अमृत वेले जाग के, इशनान करके नितनेम करदे हन, अते दिने जाके लकड़ां कट के लियाउणियां, मुल वेच के अपने घर दा गुजारा करना। अज लकड़ां कटन लई जा रहे हन, गर्मिया दे दिन हन, एक कड़ा जल दा भी नाल लै लिया है, भई प्यास लगदी है। घरों प्रसाद छक के गए सी, ते जदों थोड़ा जिहा चिर कम कीता ते प्यास लगी, ते आके कड़े दा जल वेख्या, जल ठंडा शीत वर्गा है, ते अपने पिता नूं बेनती करदे हन, भाई रूपा जी भाई ये जल साडे पीण दा नहीं, ये जल गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी आके पीवन तो कितनियां बख्शीशां होणगियां। मन विच ठान लिया, हे सतगुरु, हे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह, हे मीरी पीरी दे मालक, पहला जल तू छकेगा ते फिर मैं पीवांगा। थोड़ा समा बीतिया, प्यास वधी, रिहा नहीं जांदा, पर मन अरदास विच जुड़ गया, हे गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह, ये जल तेरे पीण दा है, ये जल जे तू पीवे, इधर धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह भाई साईं दास दे घर नूं भाग ला रहे हैं, ते अपने प्यारियां दी अरदास सुन के, अपने प्यारियां दी अरदास सुन के हजूर कहन लगे, घोड़ा तैयार करो, घोड़े ते सवार होए ते फिर आ गए। ए प्यास दे नाल दोनों जने, भाई रूपा ते इदा पिता भाई साधु राम, ए दोवें जने मूर्छित होए पए हन, और किते किते यही आवाज मुंहों निकलदी है, हे सतगुरु आओ ना, जल छको ना, ते तुहाडा शीत प्रसाद असी भी छकीए। क्योंकि अत दी गर्मी है, पए हन अणहोशियां, दो लोथां पईयां हन ते शिशक रहियां हन गुरु दे दर्शनां नूं। धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह अंतर जामी सब वेद जाने, ता किस तह आप सुनाइए, पलो पली विच आके आवाज दिती, पाई रूपा सानू जल छका, भाई सुरजीत कीता। पाई रूपे ने बड़े प्यार दे नाल हजूर नू ठंडा जल छकाया, अखां वेख वेख रजदियां नहीं, मुड़ मुड़ धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे सोहणे चेहरे वल निगाह है, तक लगा के बैठे हन, ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने नदरी नदर निहाल कर दिता, आख्या रूपिया हुण लकड़ां वड्डण दी लोड़ नहीं, हुण तूं लोकां दे पाप कटिया करेगा, रिधियां सिधियां दा तेरे हिरदे विच निवास हो जाएगा, तेरी रसना ते बैठ के मैं आप बोलांगा, जो तू कहेगा वो सत हो जाएगा, तेरा नगर वसेगा तेरे नाम ते, ते सतगुरां ने मंजी बख्शी के हुण तुसी नाम दा प्रचार करना, तो जिन्हां ने भाई ए दात मंगी है ना विसरो दी, फिर गुरु आप हिरदे

तन जियो तैको जग में, तन जियो तैको जग में, मुक्त हर चित्त में जुट विचार देह अन्य।

बुद्ध सभी पुत जो उजियारे जाने की बढ़ने मनोहात ले जाने की बढ़ने।

उस वेले बाबा दीप सिंह जी साबो की तलवंडी विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं भीड़ां दी लिखाई कर रहे सन, पर जदों उन्हां नूं अमृतसर तों आए एक गुरु दे सिख ने हरिमंदर साहिब दी बेअदबी दी गल दसी तां उन्हां ने कलम छड के दोबारा फिर तेग चुक ली अते जख्मी शेर वांग दहाड़ उठे।

फिर मोड़ देना सेवा भी इंज घरों करी हो जाएगा सौखा काम। कहते उस बरादरी का एक सिख बहुत गरीब वो खड़ा सी, मुखिया ने वो भी बांह फड़ ली, तो जो बांह फड़ ली वेखिया तो गरीब बड़ा, कहते वो ना दो नहीं तोरे पांच नहीं तोरे एक तोरिया, कहते एक दी तू सेवा। हुण सारा कट होवे कट्ठा, सामने होवे कलगियां ला है जी, पिंड होवे कट्ठा, तो कई बार ना नहीं हुंदी। कहते आऊं सिख दी बांह फड़ ली, उस सिख का ना इतिहास च आया भाई मिलागर सिंह, जिहड़ा उस घर गया, घर वाले का नाम नहीं इतिहास पता लगा, जिन्हें खड़े है गरीबड़े सिख ने उहदा नाम नहीं, जिहड़ा गया उहदा नाम भाई मिलागर सिंह है। जदों कहिंदे ओ अपने गुरु गोबिंद सिंह दे सिख नूं घर लई आ रहा है ना गरीब बरादरी दे कहण ते, तां राज सोचां सोचदा जांदा पिया खावांगा की, घर है कुछ नहीं। कहिंदे अपने घर लिजा के बंदे नूं जिवें कोई सोच लगी होवे की खुआवां की खुआवां, किन्ना दो चार मिनट सिख खड़ा रहा, सानू कोई अपने घर जाके जे खड़ा कर दे उत्थे ही काम शुरू हो जांदा है। आ भी निर्दन नूं पालना है भाई मिलागर सिंह, कहिंदा गुरु के प्यारिया बिठाएगा नहीं। कहण लगा सिखा मेरे घर चंगी चादर भी नहीं जिहदे ते तैनू बिठावां, ते मोढे ते ना हजूरिया पिया सी। सिख ने वह फड़ लिया, कहिंदा यही बिछा दे ये ते बह जाने। सिखा ये परना मैल है झूठ है। सिख ने जल मंगवाया, पांच पौड़ियां पांच बारी पहली पौड़ी पढ़ के जल छिणकिया, कहण लगा बैठन योग हो गया। हुण बिठाया ते सात संगत पतीले विच पानी पा के ना पानी, वो गरीब परिवार ते पीलू अंगूठे नाल पोले कर करके ना पीलू, ते आऊं भाई मिलागर सिंह नूं फड़ांदा ते मुंह उधर नहीं करदा, शर्म आउंदी है, ते पानी दा गलास नाल रखता ते पीलू खवा रिहा पीलू, ते नाल मुंह उधर करके कहिंदा सिखा जो होगा प्रवान कर लई, मेरे घर गरीबी बड़ी। हुण खालसा जी आ भी निर्दन नूं पालना जे, इतिहास लिखिया दो गलास पानी ते चार पीलू भाई मिलागर सिंह ने खाधे, चार पीलू ते पानी दो गिलास पी के आवाज दिती सिखा मैं तृप्त हो गया। आप सतनाम हुण ओह जिहड़ा गरीब सिख सी ना ओह सोचदा है कि जां ते सतगुरु नूं शिकायत करेगा जाके ते जां जरूर रौला पाएगा, इत्थे भेजिया प्रशादा की मिलना, ब्याह प्रशादा नहीं मिलिया, ब्याह प्रशादा की मिलना चावल भी नहीं मिले, चावल की मिलने कोई बहे चावल भी नहीं मिले, पीलू मिले। पर हैरान रह गया वो गरीब सिख कि गुरु गोबिंद सिंह का सिख गल च पला पा के कहिंदा सिखा तेरा नां की है, वो अजे भी डरिया नां क्यों पुछ रहे हैं, तेरा नां दस्सिया नहीं। सिखा जो गुरु ने तेनू बख्शिया तू मेरी सेवा की, अरदास करनी तेरी, ओदी अरदास की, सतगुरु इनू चढ़दी कला बख्शी। खालसा जी यह भी निर्दन नूं पाल कि सवेर दे दवान विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने सुराम नगर विच स्पेशल भाई मिलागर सिंह नूं खड़ा करके सारी संगत नूं बचन सुनाया कि इस सिख नूं राती प्रशादा भी नहीं मिलिया, इस सिख नूं राती कोई चावल भी नहीं मिले, पीलू खाधे ने पर तां वी सिख दे भले दी अरदास करके आया। दूजे बने मसंदां दा नक्शा खिंचया कि कई कुछ लोग उहनां नूं छकाउंदे सी पर ओह डरावा पांदे सी साडी सेवा ना कीती तुहानूं शराब दे देंगे, इहनूं पीलू मिले ने पर इह वी तां वी सिख दे भले दी अरदास करके आया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने भरी संगत विच इह गल आखी सी धन सिखा धन सिखा तेरी धन कमाई, तेरे वर्गी इहो जी निमरता इहो जिहा जरन, धन सिखा तेरी सिखी धन है, धन सिखा ते सिख ने नाल ही वड्याई कोल नहीं रखी आखिया धन दाता सब तेरी बख्शिश है धन दाता। गुरु आप प्रगट करदा जी एहो जे सिखां दा नक्शा, ए भी निर्दन नूं पालना किसे दी गरीबी नूं औगण नूं जरिया रौला।

0: कोए।
1: आज डट के लोड़ इस प्रचार की, बहुत लोड़। आम बंदा कहंदा मेरे वर्गा चंगा कोई नहीं, महाराज कहंदे अवस्था बना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं, कबीर हम सब ते बुरे, हम तज भलो सब कोए, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा। ये दवाई ते कौड़ी है पर खा लो ते बड़ी शांति। अज बहुत लोड़ है प्यार इस प्रचार की, किसी के औगण नूं जरना ते कलेश का समा लंघा रहे। मैनू याद है आ संत बाबा भूरी वाले है ना, असी बाबा जी के बचना दी शील्डां वंडदे आ, एक ते आए प्रोग्राम ते ते शील्ड देती ते उते बचन लिखा सी निम्रता रखण नाल विपता का समा टल जांदा है। बचन है बाबा नरसिंह जी, निम्रता रखण नाल विपता का समा टल जांदा है। मैनू पांच महीने बाद मिले ते कहण लगे ओ मैनू शील्ड बड़ी कम आई। मैं कहा जी किवें? कहिंदे जिहड़ी मेरी गड्डी ना छोटी जी बस अपने बहण दी, कहिंदे मैं जिथे अगली सीट ते बहना ना वो सामने लाई हुई है, ते कहिंदे इन्नी कम आंदी है कि कोई गड्डी कोई दूजा बंदा माड़ी ला जांदा है जां कुछ होर गल हो जांदी, ते कहिंदे कई वारी पहले आ जांदा सी गुस्सा, ते कहिंदे फिर वो जदों शील्ड पड़ ली दी ना वी, कहिंदे उस वेले एक मिनट निम्रता रख ली दी, लड़ाई टह जांदी। आखो सतनाम, उहदा औगण जर लिया। एवें नहीं महापुरुषां ने कोई बचन कढे हुंदे, उहनां दी गहराई हुंदी, गहराई बीबीओ इनू वरतना, इहदा लाभ लैणा, इहदी गहराई च जाणा। घर च कोई चांस होवे दूजे दा औगण ही हुंदा ना, उहनू अद्धे मिंट मिंट लई जर जाओ, कई वारी कई कलेश दे टाइम लंघ जाणगे, बीत जाणगे। निम्रता रखण नाल विपता दा समां टल जांदा, ना रखो जवाब दे दो, हो गया शुरू काम। इह वी निर्धन नूं पालणा भाई, अज लोड़ है, क्यों इस वेले युग जा रहा है फुल फुल पता फुल ईरखा दा युग है, ते दवाई कौड़ी है, भावें कोई चप्पा पुड़ी लै जाना ते भावें अद्धी पुड़ी लै जाना पौनी पुड़ी लै जाना, लै के जरूर जाना, ताकि संघ च आया किसे थाएं आवे। युग है ऐसे ले आ दिल्ली आप रकाबगंज गुरुद्वारे तो हाजरी ला के निकले सन, जान ही लगे अगली सीट ते बैठा सी, एक बजुर्ग ने शीशा खड़काया सी, शीशा खोलिया तो वह दोवें हथ करके उन्हें कहा सी, कहिंदा जी बाणी सारिया मनोकामना पूरिया कर दी है। मैं सीट ते बैठे बैठे मैं कहा हां जी कर दी है। कहिंदा जी बाणिया सारी मनोकामना पूरिया कर दी? मैं कहा जी कर दी है। मैनू कहिंदा मैं दो पाठ सुमनी साहब रोज करदा वा किसे बंदे लई कि उनू सड़क ते रुलदा वेखा। कहिंदा रुलेगा? ऐस समाज कई बंदे निर्धन नू पालना की बाणी भी इस लई कई वारी पढ़दे आ कि दूजा सड़क ते रुलदा वेखा। हुण मैनू जिहड़ा गड्डी चलाने कहिंदा जी चलीए, मैं कहा यार इहने विच फसाता, पहलां कहिंदा मनोकामना पूरियां करदी, मैं कहा करदीए, कहिंदा दो पाठ सुमनी साहब दे करदा वा फलाना सड़क ते रोले रोलेगा। मैनू कहिंदे बजुर्ग बड़ा तेज सी, कहिंदे बोलदे नहीं हुण। ऐसा है इनू की कहांगे ईरखा दा युग। अमरीका असी जिहदे रुके ना घर, हुण जिस गुरुद्वारे नूं पिछे जे अखबारां च पढ़िया तुसीं, अग भी लगी रिचमंड हिल न्यूयॉर्क, उत्थों असीं निकले सां, एक सज्जन ने दास नूं कहा सी घर आओ साडे, मैं उहदा टैलीफोन नंबर एड्रैस लिखण लग पिया, दूर दूर जगह हुंदियां वी फोन ते तेरे नाल टाइम सैट कर लैणगे कर लांगे। ते जिथे रुके सां ना वो मेरी बांह फड के लै गया पासे, कहण लगा इहदे कोलों की लिखदे पए सो? मैं कहा कहिंदा घर आओ, ते उहदा फोन नंबर एड्रैस लिख रहा सी, ते मैनूं कहिंदा इहदे घर नहीं जाणा। आखो सतनाम, कहिंदे इहदे घर नहीं जाणा। मैं कहा क्यों? कहिंदा तुहानूं नहीं पता साडे घर पंज पाठ सुमनी साहब दी रोज दी सेंची चलदी पई है, कि इह बंदे नूं असीं रोटी तों बुरकी बुरकी तों आतर हुंदिआं वेखी। मैं कहा तेरा भला हो जाए, हुण भावें टेप ही सुण लवे गुस्सा कर ले। हैं जी, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਣਜਾਣ ਪੁਣਾ ਕਿ ਪੰਜ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਸੈਂਚੀ ਚਲਾਈ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪੁਰਕੀ ਪੁਰਕੀ ਤੋਂ ਆਤਰ ਪਿਆਰਿਓ। ਆ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਅੱਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ।

पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे, हर एक सिमर प्यारे, जप मन नाम एक आधार, हर एक सिमर प्यारे। साहेब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह इस बाणी दे कर्णहार, इस बाणी दे रचनहार, पावन पवित्र बाणी विच उपदेश देंदे ने जीव हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे ही प्यारे। गुरमुख प्राणी जीव एक हरी वाहेगुरु दा सिमरन कर, एक दे लड़ लग, एक नू अपना बना, एक ते आसरा रख, एक ते भरोसा रख, एक दा ही बन जा, क्योंकि बाणी विच उपदेश है, जीव तेरे मन अंदर इच्छावां बड़ियां ने, भावनावां बड़ियां ने, तू बड़ा कुछ चाहना है, ते मिलेगा कदों, जदों एक नाल प्यार करें। सबे थोक परापते जे आवे एक हाथ, जे ओ परमात्मा एक वल हो जाए ना, सबे वस्तुआं प्राप्त हो जांदियां ने। इसलिए साहब आखदे ने जीव एक दा बन जा, ते एक नू अपना बना लै। जो अपना एक नू बना लेंगा, एक दा बन देंगा, कार्य सारे रास हो जाएंगे। हर एक सिमर प्यारे, जीवन पद निर्वाण एको सिमरी है, दूजी नाही जाए किन बिद तीरी है। हर एक सिमर एक

धारंग मजे भरम तार तत हर को उपजे राग सारंग उकडे तान तरंग रंग अत ज्ञान गीत बंधानंग।

पवित्र बाणी इसे बाणी दी बरकत ने बुद्धू दी बुद्ध चमका दिती, इसे बाणी दी शक्ति ने पत्थरां चों नहर वगा दिती, इस बाणी बन्ने लाया सी मक्खन दे डुबदे बेड़े नूं, इस तरनी लखां तारे ने गिण दसा केड़े केड़े नूं, ए ख्वाश हमेशा रहंदी ए कोई गुरमुख नदरी पै जावे, ओ पड़े अगम्मी बाणी नूं मेरे मन दी काल।